में ताकत भी आई, जो ताकत भी आई तो जुरात भी आई, मोहम्मद जो आए तो रहमत भी आई, जो रहमत भी आई तो दौलत भी आई, जो दौलत भी आई तो बरकत भी आई, जो बरकत भी आई तो नियामत भी आई, मोहम्मद की शान रिसालत भी आई, सरे पुश्त मोहरे नबूवत भी आई, बड़ी बात ये है शरीयत भी आई, विलायत भी आई, करामत भी आई, सारी दस्त दामान ईमान आया, मोहम्मद के आने से कुरान आया कि मोहम्मद

जिसने देखी एक झलक रुकी वो शहदा हो गया, एक नजर पड़ते ही हर बीमार अच्छा हो गया। कैसा ही तूफान हो लेकिन पार बेड़ा हो गया। या मोहम्मद उसका हर गम से कनारा हो गया कि जिसके सर पर आ

खान की बख्शिश उम्मत पे जब शर्ते शहादत लग गई। मरहबा ए फातिमा के लाल हुसैन इब्ने अली दे दिया।

अपना वाली है वही जो साहिबे मेराज है, जिसकी नालैनी मुबारक अर्श की सरताज है। गम के हाथों मेरे मौला जिंदगी का राज है, एक नजर की हस्ती है इबरत फकत मोहताज है, कि तुमने जिस कतरे को

को साफ करो, काबे का तवाफ करो। चलो चलो हज का महीना आ गया, चलो चलो हज का महीना आ गया।

0: छुटकी कहेंगी, अपने आप को बहुत चला। देखो
1: रवि, बर्दाश्त की भी हद होती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे छुटकी मत कहा करो, अब मैं छुटकी नहीं हूं।
0: अरे मैं तो अब तक बेखबरी था। सच कहती हो पंजाब की रेशमा, अब तुम छुटकी नहीं रही।

0: Assalamu alaikum to the President Irfan Ali, from Chiquita de Freitas, Barbados.
1: कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती, भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

0: फिर भी दिल है।
1: Which I says is have some ginger beer, ice cold.
0: ये बदलून इंग्लिशतानी सर पे लाल
1: टोपी। Made it from his garden, the ginger.
0: हिंदुस्तानी।
1: Hello, Shanta.
0: है जापानी।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।